सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी है जो
8: में ग्वाल मंडी वट पानी है जी 17 फुट आए किटारिया वटे 20 फुट ते पहुंची वही है। शहर के हेठन वारे इलाक नाला लय का परे रहने फौरी तौर से इलाको खाली करने की हिदायत जारी कई वही है।

सिंध संभली जे तक पीएसटी गंबट सबोदर में थियल नंढी चूंड में पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार बैरिस्टर असपंद यार खरल 48,869 वोट खणी वडी अक्सरियत सां खटी वियो। आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसवर महदी सिर्फ 1299 वोट खणी सघियो। तक जे समूरन 164 पोलिंग स्टेशन मां मिलियल नतीजन मूजिब असपंद यार खरल वाज़े अक्सरियत सां कामयाबी माणी 48,986 वोट खणी कामयाबी माणे वरती। सैयद तसवर महदी हुसैन शाह 1299 वोट खणी ॿिए नंबर ते, जॾहिं त मोहम्मद मूसा बोडो 702 वोट खणी टे नंबर ते। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम अली हुजण बि सिर्फ़ 408 वोट खणी सघियो। नतीजा मुकमल थियण बैदि रिटर्निंग आफ़ीसर फार्म 47 जारी करे छॾियो। चूंडनि दौरान वोटनि जो टर्न आउट 20.53% रहियो। 2,54,980 रजिस्टर वोटर्स मां सिर्फ़ 52,355 वोटर्स जो आईनी हक़ इस्तेमाल कयो वियो।

जमायत इस्लामी जो पेट्रोलियम लेवी में वाद ऐं महांगाई ख़िलाफ़ मुल्क जे चइनी सूबाई राजधानियुनि में वॾा एहतजाज। कराची, लाहौर, पिशावर ऐं कोटिया में धरणा आया हुया। लाहौर में वज़ीर अला हाउस वेझो फैसल चौक माल रोड ते धरणो हयो वियो। जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान चयो आहे त हुकमरान टोले अवाम खे मुसीबत जे वर चाढ़े छॾियो आहे। रुगो तेल जा अघ ई नथा वधाइनि पर टैक्सिस बि वधाए छॾनि था। पेट्रोलियम शयुनि जा अघ वधण सां हर शइ महांगी थी वेंदी आहे। कराचीअ जे रेड ज़ोन में धरणो। गवर्नर हाउस ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्ता कंटेनर लॻाए बंदि कया विया। हाफिज़ मनम ज़फर चयो आहे त नाजाइज़ टैक्स ज़रिए अवाम जे खीसनि ते धाड़ो हयो पियो वञे। गैस, बिजली, पेट्रोल शयुनि जे अघनि में घटिताई करणी पवंदी। पिशावर में गवर्नर हाउस अॻियां धरणे में कारकुननि जी वॾी अक्सरियत में शिरकत। लियाकत बलोच चयो त फारम 47 बुनियाद ते मरियल हुकूमत महांगी जो कारण आहे। 26 ऐं 27 आइन तरमीम ऐं आइन जो होलियो बिगाड़ियो वियो आहे। सॼे मुल्क मां काफ़िला इस्लामाबाद तरफ़ रवाना थींदा। कोटिया में बि जमायत इस्लामी जे कारकुननि जो गवर्नर हाउस अॻियां धरणो।

हुकूमत सां ॻाल्हियुनि खां पोइ गुड ट्रांसपोर्ट मुल्क गिर हड़ताल 40 ॾींहनि लाइ मुलतवी करे छॾी। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे सदर मलक शहज़ाद ऐवान चयो आहे त 9 ॾींहनि खां हड़ताल जारी हुई, पर मुल्क साम्हूं मलक जो को बि मुक़दमो न आयो। मुल्क जे वसी मफ़ाद में हड़ताल 40 ॾींहनि लाइ मुलतवी करे रहिया आहियूं। डिसम्बर में बि ख़ातिरियूं ऐं वाइदा कया विया पर पूरा न थी सघिया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमीअ चवण आहे त वज़ीर आज़म मुल्क जे बहितरी लाइ ॾींहुं राति कम करे रहियो आहे। खिते में अमन लाइ तारीख़ी दिफ़ाई मुआदो मके में

0: मुतालबा दुरुस्त हुजनि या ग़लति, एहतजाज जो अहिड़ो रस्तो इख़्तियार न कयो वञे जंहिं सां मुल्की एक्सपोर्ट मुतासिर थिए।
1: हम आए थे और अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध लाए थे, जिसको बतरू का सिंध कहा जाता है। जनाब, सिंध की जमीनों का 60% हिंदुओं का था, जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है। वहां वो मतरू का सिंध, वो 60% जमीनें हिजरत करने वालों की थी।
2: आज मुल्क चलाने वालों को यह अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीकेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। तो नाराज हमसे ना हो, लोग नाराज उनसे हो जो ये जो अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराजगी जाहिर करें।
3: पाकिस्तान की बका सालियत, अब पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स के क्याम के बगैर नामुमकिन है।
0: मुल्क बचाने जो वाहिद तरीको इंतजामी यूनिट्स ठाण आए, नवा सूबा ठाण गद्दारी आए तो यह गाल आईन में खत्म छो न कई वही। नवन सूबन के मुतालबे ला एम के मगवाणा की गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी चे तो नवा सूबा मुतालबो न पर वक्त की घुर्ज आन। असांजी सूबन वारी तजवीज़ पूरे मुल्क में आवाज उथी रो है। सिंध में लडे वाल हिंदी जो 60% जमीनू असाजन सिंधन की मेहरबानी जो डी भी मल्हाइंदी। फारूक सत्तार तो मुल्क की सलामती नवा इंतजामी यूनिट्स ठाण में आन। मुस्तफा कमाल तो पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वेट किया है। इंतजामी यूनिट से सिंध जहा हारी भी आजाद थन्दा, सिंध के मान की हालत बदतरीन है। बैराड़ी में जिते कुत्ता पानी पियन था, औरतू उतां पानी भरण से मजबूर आन। मुतहदा के नाम निहाद क्यादत सूबे न पर कराची के अवाम व्यापारी अमन ए खुशहाल के यर्गमाल बनाने की गाल पई करी। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ आए तो सख्त ज़हनी दबाव जो शिकार है, जैजो इलाज रुगो सेहत वाले वफाकी बाजार वट है। यह फ्रस्ट्रेशन एम क्यू एम वारे सियासी अकेलाप ए सियासी बेवसी की अक्कासी करे थी। सईद गनी जो चवण है तो सिंध जो आम तोड़ी सियासी पार्टियों मुतफिक आन तो सिंध में को भी नौ सूबो न ठहण घुर्ज। एक बे ते गोलियों वसाईंदड़ अज सिंध के अवाम के विरायण की साजिश पा कन।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
6: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन असा जडे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन तो वरी बीहर छो प्यारियों। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद है। तो इन आसान जवाब यो आ, ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी ए जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधायण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
8: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
9: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फऔज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
8: पाणीअ में चार सबब खतरे जा सायरन वजाया विया। एमडी वासा अज़ीज़ुल्ला खान चयो आहे त नालाली में गवा मिंडी वटि पाणी जी सतह 17 फुट ऐं कटियारियां वटि 20 फुट ते पहुची वई आहे। शहरनि खे हेठियनि वारे इलाइक़नि ऐं नालाली खां परे रहण ऐं फौरी तौर इलाइक़ो ख़ाली करण जूं हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि।

0: सिंध असेंबली के तकपीएस टीह गंबट सोबो देरो में थियल नंढी चूंड में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर रसवंत जारफल 48,879 वोट खड़ी वही अक्सरियत से खटे वो। आजाद उम्मीदवार सै तस्वुर मेहंदी सिर्फ 1200 वोट 99 वोट खड़ी सको। तक के समूर 164 पोलिंग स्टेशन में मिले नतीजन मूजिब असवंत जार वाजे अक्सरियत से कामयाबी माणी है। 48,986 वोट हासिल कया सै तस्वुर मेहंदी हसन शाह 1299 वोट खड़ी बे नंबर ते मोहम्मद मूसा बुरडो 702 वोट खड़ी टे नंबर ते रहो। आजाद उम्मीदवार गुलाम अली उजण बे सिर्फ 408 वोट खड़ी सको। नतीजा मुकम्मिल थियण बाद रिटर्निंग ऑफिसर फार्म 47 जारी कर छो। चूंडन दौरान वोटन जो टर्न आउट 20.53% रो। 2,54,980 रजिस्टर्ड वोटर्स मां सिर्फ 52,350 वोटर्स वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कयो।
1: हम आए थे और अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध लाए थे, जिसको बथरू का सिंध कहा जाता है। जनाब, सिंध की जमीनों का 60% हिंदुओं का था, जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है वहां। वो मथुरू का सिंध, वो 60% जमीनें हिजरत करने वालों की थी।
2: आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का बचाने का वाहिद तरीकेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। तो नाराज हमसे ना हो लोग, नाराज उनसे हो जो ये जो अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराजगी जाहिर करें।
3: पाकिस्तान की बका सालियत, अब पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स के क्याम के बगैर नामुमकिन है।
0: मुल्क बचाने जो वाहिद तरीको इंतजामी यूनिट्स ठाण है, नवा सूबा ठाण गद्दारी है। तो यह गाल आइन में खत्म छो न कई वही। नवन सूबन के मुतालबे लाए MQM अगवाणन के गरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल को सदीकी चयो तो नवा सूबा मुतालबो न पर वक्त की घुर्ज है। असां जे सूबन वारी तजवीज में पूरे मुल्क में आवाज उथी रो है। सिंध में लडे वयल हिंदुन जो 60% जमीनू असाजू आन। सिंधन की मेहरबानी जो ई भी मल्हाइंदी। फारूक सत्तार चयो तो मुल्क की सलामती नवा इंतजामी यूनिट ठाण में। मुस्तफा कमाल चयो तो पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट बिल वेटो क्यू इंतजामी यूनिट्स सा सिंध जा हारी भी आजाद थींदा। सिंध के माण्हुनि जी हालत बदतरीन आहे। बहराड़ी में जिते कुत्ता पाणी पीअन था, औरतूं उतां पाणी भरण ते मजबूर आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असाजे बार पेर ही पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पियण से बार जी इम्यूनिटी जका वह बेहतर थिए थी। हाँ जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जका पांजे बार के करायो तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्द में जो महफूज रह।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 9:15 AM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 10:45 AM. This time track is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: अक्सर माण्हू जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
0: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
3: तहज़ीब सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
4: जिसकी फ़ज़ाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GFM की आवाज़
3: GAFM Network, सिंध की आवाज़.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: फकीरी एनल जैसे क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
6: इदारन की कारकर्दगी बेहतर बनाने गडियल रब्ता मजबूत करण ते गौर कयो वयो। मोहसिन नकवी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कम ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटी ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाइनि। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो कतल केस जे जवाबदारनि जी वरियत खिलाफ़ अपीलन ते ॿुधणी वकील आगाही डि॒नी त केस जूं ब॒ FIR आहिनि। हिकु केस में मरहूम पुलिस अहलकार शाहिद हयात बरी थी चुको आहे ऐं ॿिए केस में अपील आहे। अदालत वकील खां पुछियो त फरियाद जी मौत खां पोइ संदसि भाउ अपील दाख़िल करे सघे थो। वकील चयो त अहिड़ो सवाल नकीबुला कतल केस में कयो वियो, औलाद जा बेवा जे बदिरां भाउ पारां केस जी पैरवी करण जो जवाज़ न आहे। अदालत ॿुधणी 6 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। मटियारी जो ज़मीन जे तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल थियण जा इतलाह। शाहपुर थाणे जी हद KTN स्टाफ वटि कोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थी पियो, जहिड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में हिकु ॼणो क़तल थियण जा इतलाह। लाश अस्पताल मुंतकिल थियो। कोड़ा भरसाण जातल शख्स जो लाश हथायो। गोठ कूड़ो खां नबड़ो भरसां लाड़काणो बाईपास वटां हिकु लाश हथायो आहे। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो।
3: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए FM 91.6।
8: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
9: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: Assalamualaikum. You are showing it to your video FM88. और साथ ही साथ प्यारा से चल रहा मीठी सी आवाज
1: अब आप उसे किसी जगह से भी मौजूद है बिल्कुल टिप से किलो एक साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरे पूरे एक बजे तक क्योंकि आप सुन रही हैं जिंदगी गुजार है।

अच्छा तो क्या मैं हम सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, गाड़ी में हैं, बाइक में हैं, उसमें जहां पे जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बेटर लगते हैं अपनी गाड़ी में अपनी बस की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बबल खरीदिए थे मौजूद आओ तो वक्त खुदा खरीदिए थे मतलब वो लोग जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जिए हजारों साल और हमेशा जीत रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, जो लोग लाइफ में कुछ अलग कुछ डिफरेंट कुछ बेटर कर रहे हैं विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो मेरी आवाज जिन दरियाओं से वालों शहर शराबों वालों और पहाड़ों दरियाओं में गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी जैसे कहेंगे मरहबन बिल्लम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे लेजी आया नुसर बिस्मिल्लाह बोंजोर शानी हाउ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इस गाने के साथ ही आपको बताएंगे आगे चल के हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: Okay, जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे कहते हैं आज ये रुखसाया आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. जी, आप लोग अब मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज करेंगे. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 1. फिर कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज FM88, GFM88. GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है जी पोस्ट जिंदगी गुजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं. तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे. सो हम सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं हमेशा की तरह ब्रेक. पहले ब्रेक के बाद हमारा जो सेगमेंट होता है डैड सुर लगाओ गाना सुनाओ, सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम करते ये है कि कॉलर आता है, अच्छा सा गाना सुनाता है जो कि पाकिस्तानी कॉन्टेंट का होता है, ठीक है, और दूसरा कि रोने धोने वाला नहीं होता, तो वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाता है. अदरवाइज आपका गाना अगर बॉलीवुड हुआ या फिर रोने धोने वाला हुआ, मैं आपसे सुन तो लूंगी लेकिन प्ले नहीं करूंगी. ये इस सेगमेंट का होगा रूल. और सेम सेम कॉलर्स नॉट अलाउड. मैं चेक करूंगी कि कौन आ रहा है बार बार, ठीक है, और अगर जो बार बार आया उसकी मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी. पहले से बता रही हूँ, फिर ना कहिएगा बताया नहीं, मैं एक सेकंड लगाऊंगी आउट करने में, ठीक है. तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हम चेक करेंगे कॉलर कहाँ से हमारे लाइन पे मौजूद है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? कुर्बान भाई, कैसे? ठीक ठाक. आपकी आवाज से ज्यादा हवा की आवाज आ रही है, मुझे बताएं. हाँ, अब आवाज आ रही है. अच्छा सा गाना सुना दें हमें.
1: बिल्कुल ताहे कलाम बुदाएं हो गया तुमरे.
0: ओके.
1: काम नहीं जाना मुझे महबूबा के जा तो खेसा बस मुझे प्यारा उदाकार अदा काशिद.
0: ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
1: जी,
0: किसको डेडिकेट करना है?
1: कालू कलाशारी अजी सोलंकी काठड़ी का गुलाम रसूल मरे अजी चरवार.
0: ओके, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखना. 03000113488. मेक श्योर आपका गाना रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है. अच्छा सा गाना होना चाहिए, ना रोने धोने वाला होना चाहिए, ना कोई और कंटेंट होना चाहिए, मतलब बॉलीवुड कंटेंट के अलावा कोई भी कंटेंट हो प्ले कर दूंगी, ठीक है. तो इस बात का खास ख्याल रखते हुए नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
2: हेलो, मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक.
2: खैरियत खैरियत, ठीक ठाक ठीक ठाक.
0: अच्छा, मुझे बताइएगा गाना लेकर आए हैं?
2: नहीं, लेकर तो नहीं आया, जहन में है.
0: जहन में है, सुना दे फिर. अच्छा सा होना चाहिए, दुखी गाना नहीं होना चाहिए.
2: नहीं बाबा, दुखी नहीं सुनूंगा.
0: ओके.
2: रुख बदले चाहे तुम बदलता रहे, चाहे तुम पान कोई बदलता रहे, मेरे प्यार का दिया यूं ही जलता रहे, मेरे प्यार का दिया यूं ही जलता रहे, रुख बदले चाहे तुम बदलता रहे, प्यार का दिया.
0: ओके,
2: मेरे प्यार का दिया.
0: ओके जी, किसी को डेडिकेट करना है?
2: नहीं, किसी को डेडिकेट नहीं, मुझे पहले निकाती नहीं है.
0: चलिए ठीक है, फिर आपका गाना इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए.

ओके जी, साथ साथ हम कॉलर्स को रिसीव करेंगे 03000113488 के ऊपर. एक और कॉलर, हेलो. ओके, हेलो हेलो. ओके जी, कोई है कोई नहीं है. ओके, कॉल भी ड्रॉप हो गई है. अब क्या किया जाए. वेरी बैड. एक और गाना प्ले करते हैं जी. गाने के साथ हम जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी कॉल्स को रिसीव करेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज
2: सोना से है कामयाबी।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: नेक्स्ट कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी कौन बात कर रहे हैं? गाना से ओके, गाना सुनाएंगे भाई?
1: गाना
0: फिर अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. इस सेगमेंट में लोगों के लिए जो गाना सुनाएंगे आके, ठीक है? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड. ठीक है जी, सो नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे, एक और ट्राई करेंगे. हेलो
2: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं?
2: अल्लाह दिनों खुश हो.
0: अल्लाह दिनों खुश हो. कैसे? ठीक ठाक. पहली दफा शो सुन रहे हैं?
2: सुन रहा हूँ तुम्हारा प्रोग्राम.
0: ओके, तो मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
2: मैं नहीं गाना, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं बताया गाना.
0: चले फिर मैं सुनाती हूँ, वो सुनिएगा. थैंक यू सो मच हाफिज. एंड क्यों वाले कॉलर्स क्यों नहीं है? गाना सुनाते हैं. नेक्स्ट कॉलर. हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो,
0: कौन बात कर रहे हैं?
3: ओके,
0: प्रोग्राम सुनते हैं?
3: जी जी.
0: तो मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
3: जी जी.
0: सुना दे
3: बाजी, सिंधी में सुनाऊं?
0: सिंधी में सुना दे, उर्दू में सुना दे. ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई है. वेरी बैड. Why? चलो मैं आपको सुनाती हूँ एक अच्छा सा गाना जो कि मैं सुनाने जा रही हूँ. एंड दिस सॉन्ग इज बाय बिलाल सईद एंड मेहर ताहिर. सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

आगे साथ साथ आज का जो टंग टेस्टर है वो आपसे शेयर करती जाती हूँ जी। आज का टंग टेस्टर ये है कि बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भर कर बंद बॉक्स में बंद किए, ठीक है। बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में बर्गर में बंद किए, ठीक है जी। तो आज का टंग ट्विस्टर है बेसे, ठीक है। तो ये टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे, और जब जो बंदा ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर बोलेगा वो विन करेगा हमारे इस सेगमेंट को। सो आप जरूर देखें, आप प्रैक्टिस करें एंड देन कॉल पे आए और फिर टंग ट्विस्टर बोलिए। दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी।

0: अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फौजी मशकूं महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो त सुठनि लाॻापनि सबब गॾियल फौजी मशकनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशकूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी। पार्लियामेंट अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक जी सरहद हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवण आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक इजलास अॼु 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्यवाही बाबति मुशावरत कई वेंदी। घरू वज़ारत जे मातहत समूरनि सरबराहनि जे घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि इजलास। घरू वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गॾियल राब्ता मज़बूत करण ते ग़ौर। मोहसिन नक़वी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कम ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुरबर वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभिनी इदारनि जा सरबराह डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटी ते असराइता ऐं गॾियल क़दम यकीनी बणाइनि। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो क़तल केस जे जवाबदारनि जी बरियत ख़िलाफ़ अपीलनि ते ॿुधणी वकील आगाही ॾिनी त केस जूं 2 FIRs आहिनि। हिकु केस में मरहूम पुलिस अहलकार शाहिद हयात बरी थी चुको आहे ऐं ॿिए केस में अपील आहे। अदालत वकील खां पुछियो त फरियादी जे मौत खां पोइ संदसि भाउ अपील दाख़िल करे सघे थो। वकील चयो त अहिड़ो सवाल नकीबुला क़तल केस में कयो वियो हो। औलाद या बेवा जे बदिरां भाउ पारां केस जी पैरवी करण जो जवाज़ न आहे। अदालत ॿुधणी 6 अक्टूबर ताईं मुलतवी करे छॾी। मटियारी वेझो ज़मीन जे तकरार सां ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल थियण जा इतला। शहादपुर थाणे जी हद KT स्टाफ वटि कोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थी पियो, जहिड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में हिकु ॼणो क़तल थियण जा इतला। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। ऐं खोड़ा भरिसां हिकु अणॼातल शख़्स जो लाश हथायो आहे। ॻोठ कोड़ो खां नबड़ो भरिसां लाड़काणो बाईपास वटां हिकु लाश हथायो आहे। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. आप मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए. हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल की जा सकती है. सो आप लोग कॉल कीजिए. और आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएंगे बबलू ने नहीं कह के दिखाएंगे कि बबलू ने भुने बादाम भरी बोरी में. मेरा भी गलत हो गया सॉरी. बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. ठीक है ये कहना है बबलू ने भुने बादाम बड़ी बोरी में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए है ना. बहुत उलझा देने वाला टंग ट्विस्टर है. अब देखते हैं कि आज के टंग ट्विस्टर कौन कह पाता है. हेलो ओके हेलो
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम. कौन कहां से?
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन कहां से?
1: जी बलोच.
0: जी हम बलोच भाई कैसे ठीक ठाक?
1: अल्लाह का शुक्र है आप बताएं.
0: मैं बहुत अच्छी. मुझे बताएं टंग ट्विस्टर सुना?
1: टंग ट्विस्टर सुना लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ. जब तक ये मेरा फॉल्ट सही नहीं होगा ना मैं आपसे बात नहीं कर सकता.
0: क्या सही नहीं होगा?
1: मेरी बात मैं जो कह रहा हूँ ना ये मेरी वॉइस मैं खुद सुन रहा हूँ अपनी. ठीक है ना. जब तक ये फॉल्ट सही नहीं होगा मैं बड़ा हूँ डिस्टर्ब होता हूँ कि आप मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ.
0: अच्छा मतलब आपको आवाज वापस आ रही है आपकी. तो ये नेटवर्क का इशू है. हमारा क्या कसूर है?
1: नहीं देखें आप उसको एक बार ऑफ एयर करें इसको ऑन एयर न करें. ऑफ एयर में मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज मुझे सुनाई देती है या नहीं. अगर नहीं सुनाई देती है तो आपकी तरफ से फॉल्ट है क्योंकि जब तक आप इसको ऑन करते हो ना ये हेडफोन को तो ये मेरी आवाज मुझे डबलिंग में आती है.
0: अच्छा अब इश्यू क्या है आपको? आपने मतलब ये शिकायत कर ली उसके बाद और कुछ कहेंगे?
1: नहीं सुने प्रोग्राम तो मैं डेली सुनता हूँ.
0: हाँ जी
1: तो बहुत जाता है कार्यक्रम मेरी कॉल भी जाती है
0: जी.
1: लेकिन है ना मैं उसको ना डिस्कनेक्ट कर देता हूँ. मुझे पता है कि मैं अपनी वॉइस खुद सुन रहा हूँ.
0: लेकिन बात तो हो जाती है ना अगर आपको आवाज डबल आ रही है. नहीं अगर आपको डबल आ रही है तो बाकी लिसनर्स पे ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डबल आवाज आ रही है. सो हो सकता है कि नेटवर्क का कोई इश्यू हो या कोई हेडफोन्स वगैरह या फिर कोई फोन का इश्यू भी हो सकता है.
1: तो मैं आपको बताऊं
0: कोई बात नहीं
1: जितने भी नेटवर्क है ना किसी में कोई शिकायत नहीं. मैं सबसे कॉल करता हूँ ठीक है ना. फिर सक्कर नेटवर्क के साथ इसमें मेरे को डर लगता है ना. मैं नैन साहब को कॉल कर सकता हूँ ना आपको
0: चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अगर मैं इस कन्वर्सेशन में जरा आगे गई तो एक तो सेगमेंट का टाइम चला जाएगा एंड दूसरा फिर ये जो आपको मतलब इतनी कोई ज्यादा कोई शिकायत है तो आप बस फिर सुने आप कॉल ना करें यही कह सकती हूँ मैं. थैंक यू सो मच भाई आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया. आप मुझे डेली सुनते भी हैं लेकिन कॉल के बारे में जो आप बता रहे हैं कि आपका आवाज आपकी वापस आती है तो हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू हो कोई हेडफोन्स लगाने का इश्यू या कोई फोन में भी इश्यू हो सकता है कि आप किस फोन से कॉल मिला रहे हैं या किस जगह पे जाके ऐसी बात कर रहे हैं. ठीक है तो ये कुछ आजकल नेटवर्क के इश्यूज हैं और हो सकता है कि ऐसा ही हो. ठीक है क्योंकि अगर आपको आ रही है तो बाकी लिसनर्स को भी आनी चाहिए. अच्छा नेक्स्ट कॉल है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: सरदार कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ. आप बताइए कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे बताओ सरदार के टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
2: बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे
0: क्या बात है
2: बंद किए. बबलू ने बुने बादाम बड़े बोरे में भरकर बंद बॉक्स में बंद किए. बबलू ने बुने
0: रुक जाओ
2: भरकर बंद बॉक्स में बंद.
0: वाओ क्या क्या मतलब क्या स्पीड है और क्या कैसे फ्लो में जा रही हो. क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ अच्छी अच्छी खासी चीजों को ना नजर बड़ी जल्दी लगती है तो माशाल्लाह कह देना चाहिए है ना. سر درد
2: آ رہی ہے آپ کی آواز
0: آواز آ رہی ہے اچھا کچھ اور کہنا ہے سر درد تھینک یو سو مچ بہت سارا خیال رکھو اپنا اللہ حافظ اور یہ کیا آ گیا جو بھی آیا 03000314488 اس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے جو کہ آپ لوگ کر رہی ہیں نیکسٹ کالر ہے وہ ہیلو وعلیکم السلام اوکے سلام کرتے ساتھ ہی کال چلی گئی ہے پانی میں ایک اور کال لے کر آئیں گے پانی سے اوپر ہیلو
3: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون کہاں سے کون سب در بلوچ مورو سے کیسے بھائی ٹھیک ٹھاک
3: الحمد للہ
0: میں بہت اچھی ہوں مجھے بتائیے گا کہ ٹنگ ٹوسٹ نہ بولیں گے بول دیں مشکل ہے چلیں پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ یہ سیگمنٹ انہیں لوگوں کے لیے جو ٹنگ ٹوسٹ بولیں گے اینڈ نیکسٹ کالر ہم دیکھیں گے کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے ویری بیڈ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری آواز کو خیر ہم گانا سنیں گے گانا انجوائے کریں گے گانا میں پلے کرنے جا رہی ہوں فار دا ویری فرسٹ ٹائم بائے نصرت فتح علی خان سنیں گے انجوائے کریں گے آگے چلیں گے

0: It's It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम
3: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उन के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगह ते वैक्सीन कैम उम्र ते पोलियो लगी सके तो कैम उम्र ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज ॿुधंदा रहो

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ठीक है, टंग ट्विस्टर कह के दिखाएंगे। अच्छा, साथ साथ आप लोगों के मुझे मैसेजेस और कमेंट्स भी रिसीव होते जा रहे हैं, तो विदाउट एनी डिले उन तमाम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलते हैं जो कि काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि मैं साथ साथ एक अच्छा सा गाना भी प्ले कर लूं, और जब मैं अच्छे से गाने की तरफ देखती हूं तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आ जाते हैं, और मैं सोचती हूँ कि इसमें से मैं कौन सा प्ले करूं। सो हम एक अच्छा सा गाना प्ले करेंगे, और वो जो

इसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम सिंध की आवाज आरजी रुखसार, कैसी हो आप? सॉन्ग प्ले करो दिल मेरी ना सुने बाय आतिफ असलम, बॉलीवुड कंटेंट नहीं प्ले कर सकते, सॉरी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में।
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

भगवान से गहन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजर रहे हैं, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार लास्ट लिंक में वापस आ चुकी है जी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, यानी कि वक्त का मुकाबला सख्त हो रहा है।

0: इसी के साथ साथ हम चलते हैं जी आगे और शो की बहुत सारी कॉल्स हम रिसीव करेंगे 03000 के ऊपर लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे और चेक करेंगे कि कौन है कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर। पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर। अरे इस दिल में और कौन है, मेहमा तुम ही तो।
0: अरे वाह,
1: अपने अल्ताफ बलो जाग जाने का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मशर की तशनगी से क्या खौफ है अल्ताफ, कौसर का जाम देगा मुझको इमाम मेरा। लोगो साहेब हुस्न की आमद है इंतजार, बाकी का सबक है जाम कौसर से प्यार करो।
0: वाह।
1: अरे शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे, शिकवा शिकायत की जाने मन आदत नहीं मुझे, ये इल्जाम देकर न दीवाने को दार दार करो। मैं खाने से तेरे दर तक से मेरी मंजिल, तुम जो चाहो वही रास्ता अख्तियार करो। अरे हुदू के रूबर, अरे हुदू के रूबर उन्हें अपने अल्ताफ को शर्मसार करो। अरे कुछ भी न सही, अरे कुछ भी न सही, मेरी सदाकत का तो इतबार करो।
0: वाह क्या बात।
1: अल्लाह आपको अपने इज्जमान में रखे, पलपन पाक के साए में रहे, और जो न मांगो वो आपको मिल जाए। मदीने अली
0: सरकार, बहुत खूबसूरत दुआ और बहुत खूबसूरत बात। तो क्या बात है जी, क्या बात है। एंड इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम भी जा रहा है इख्तिताम की तरफ, और लास्ट महीने मैसेज रिसीव हुआ है, गुड आफ्टरनून शो इज नाइस, यू हैव टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग इन बलोच मुंगो खास। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपको, ठीक है, क्योंकि मैं अल्लाह हाफिज करने वाली हूँ। और इसके अलावा इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, और रुखसार क्या हाल है आपका, नहीं हो सकी क्योंकि मैं स्कूल पढ़ाई चल रही है और मामू की शादी है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और सिंधी शेरू प्ले करो मीरपुर खास से रुखसार मरी। थैंक यू सो मच रुखसार मरी, आपने हमें ज्वाइन किया। तो वहीं लास्ट मिलेंगे आपसे इजाजत, और इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटकार होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुजार है अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रुखसार कुछ

मटियारी वेझो जमीन जे तकरार तां ॿिन धुरिन में जेड़ो फायरिंग, हिकु ॼणो क़तल। शाहदपुर थाणे जे हद केटी स्टाफ वटि कोसा बिरादरी जे ॿिन धुरिन में जेड़ो थी पियो, जेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में हिकु भाउ कोसो मारिजी वियो। लाश अस्पताल मुंतकिल कई वई।

0: भान सैदाबाद लग झांगारा में पीअण जे पाणीअ जो बोहरान संगीन समय माण्हुनि जो धरणो झांगारा एक्शन कमेटी जे सॾ ते समय ॻोठाणनि सेवण झांगारा रोड ते धरणो हयो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त कुदरती वसीलनि सां मालामाल हुजण बावजूद झांगारा वासी पाणीअ लाइ तड़पी रहिया आहिनि। करोड़ रुपियनि जी लागत सां मंज़ूर थियल आरओ प्लांट खे यूसी चेयरमैन हलाइण लाइ तयारु नाहे। टिनि ॾींहनि अंदरि पाणी जी खोट ख़तम न कई वई त इंडस हाईवे ते धरणो हणंदासीं। दड़ो जे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरनि दवाउनि ऐं बुनियादी सहूलतनि जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज जारी आहे। सियासी समाजी अॻवाननि, पैरामेडिकल स्टाफ़ ऐं मरीज़नि जे वारसनि एहतजाज जो मुज़ाहिरो कयो। अॻवाननि जो चवणु आहे त अस्पताल जा इंतज़ाम PPHI हवाले थियण खां पोइ अस्पतालनि में सहूलतनि जी खोट पैदा थी वई आहे। ग़रीब माण्हू इलाज लाइ परेशान आहिनि। अस्पताल मां डॉक्टरनि ऐं दवाउनि जी खोट ख़तम कई वई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वरी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाक़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: हक सच जो आवाज़ गीत संग

0: दिखाए दे।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
4: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: तो सैमी सलामत रखे सो आमीन या रब अलआलमीन। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जल्दी का नाम मस्ती। बिल्कुल सही प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों के लिए ढेर सारी बातें की जाती है। प्रोग्राम में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लगाए जाते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों के साथ गपशप होती है। अच्छा उसके अलावा प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम में आपका हमारा साथ होता है, यानी कि अगर आप हमारे साथ मौजूद होते हैं तो प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन भी करते हैं। वो कैसे ज्वाइन करते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते तरीकेकार नहीं मालूम तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं और जनाब आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जी साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स गो रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सदराम मुस्कान। नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सदराम के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में और यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिसनर्स हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के तो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होठों पर 440 उल्की समाल लाने का काम करेगी भाईजान आपकी सिदरा। तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 उल्की समाल ला रहे हैं और यहाँ पर ऐसे करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है। बहुत ही प्यारा सा कसीदा हम यहाँ पर सुनने वाले हैं और सीधा सुनने के बाद हम जैसे ही प्रोग्राम में वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ करेंगे जी ढेर सारी मस्तियां, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है जल्दी का नाम मस्ती, आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक का। तो चलिए जी एक प्यारा सा कसीदा एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। बिल्कुल जी सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक।

0: आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया जाए और आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मंडे मंडे के बारे में एक आपने लाइन बोलनी है जो कि आपको लगता है कि ये लाइन जो है ना मंडे के ऊपर बिल्कुल फिट करती है, और अगर मंडे के हिसाब से देखा जाए तो मंडे के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है ना मंडे से पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, और मंडे देखा जाए तो भाई थोड़ा बहुत से नफरत के लायक भी है ऑफिसेज के हिसाब से देखा जाए, स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो बेचारा मंडे बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बदनाम भी हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा ऐसा वाला सीन बन चुका है कि मंडे बेचारे को हर वक्त जो है ना वो लोग कहते रहते कि भाई मंडे तुम क्यों ही आते हो। तो आज बिल्कुल आपने ऐसा करना है, मंडे के लिए कोई एक ऐसा जुमला बताना है, एक ऐसा जुमला बोलना है जो कि आपको लगता है कि ये तो भाई मेरे हिसाब से मंडे के लिए परफेक्ट है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो LRKANA FM 88.8 हमारा पेज है, आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारा प्रोग्राम जो है ना वो वहां पर लाइव मिल जाएगा, और पेज को आपने जल्दी से जो है ना वो फॉलो कर लेना है, और बिल्कुल आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। और मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताएंगे कि एक ऐसा जुमला बोले जो आपको लगता है कि ये मंडे भाई साहब के लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, मंडे को क्यों लोगों ने इतना बदनाम किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये जो बदनामी मंडे ने झेल रखी है सहता आ रहा है वाकई सही भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए, आपके मैसेजेस जो कि मुझे 888 और फेसबुक पर मिलते जा रहे हैं, बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम होते जाइए। और यहाँ पर टाइम हुआ जाता है हम जरा जाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते, आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जा कर वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, जल्दी का नाम मस्ती आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे, मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
4: सिंधु जो आवाज बुदंदा रहो। हक सच जो आवाज, हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

आसान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज।
4: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज। तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM 88 की आवाज।
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ जनाब मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मधली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चल दिखे नाम मस्ती। बिल्कुल सही कहते हैं जिंदगी में मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। वैसे भी अगर आप अपनी जिंदगी में मस्ती को जरा आउट कर देते हैं, मस्ती आपकी जिंदगी से कहीं गायब हो जाती है, तो आप यकीन जाने आपकी जिंदगी जो ना वो बेरंग हो जाती है। वैसे भी कहते हैं कि अपनी जिंदगी में रंग भरने का अख्तियार आप किसी को भी ना दें। हो सकता है जिसको आप ये अख्तियार दे रहे हैं उसके पास सिर्फ काले रंग के अलावा और कोई रंग ही ना हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी में जो रंग भरने ना वो आप अपने हिसाब से भरा करें, किसी और को ये अख्तियार हरगिज ना दें। और इसी के साथ साथ आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश किया करें। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और शाम के प्रोग्राम भी हो चुके हैं तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर शामिल होकर अपने होने का एहसास दिलाएंगे। अच्छा, तो मैंने आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं मंडे जनाब के लिए कोई एक ऐसा आपने जुमला बोलना है। मंडे जो है ना हमेशा बचपन से लेकर मंडे के लिए हमारे दिल में एक अलग सी नफरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, स्कूल से लेकर मतलब ऐसा वाला सीन है कि मंडे बेचारा, भाई ये है कि मंडे बेचारे से बड़ी नफरत है। तो आपने आज ऐसा एक जुमला बोलना है, एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जो आपको लगता है कि ये मंडे के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे। खास तुम्हारी बातें करेंगे आप, कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं जो शायद हम किसी को कह नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे हम अपनी वो बातें बता सके, ताकि हमें फिर ये एहसास हो सके कि हमारे पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसे हम खुलकर अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, शेयरिंग इज कैरिंग होती है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो क्या बात है, आपके मैसेजेस मुझे बिल्कुल मिलते जा रहे हैं। और अगर आप कोई भी अच्छा सा गाना सुनना चाहते हैं, मतलब अच्छा होना चाहिए, तो वो गाना भी आप हमें फरमाइश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके मैसेजेस की जानिब हम आएंगे, लेकिन मेरे पास जो अच्छी अच्छी वाले गाने मौजूद हैं तो वो कौन सुनेगा। बिल्कुल जी, वो भी हम ही सुनेंगे। अच्छा वैसे ये बात है ना, बैठे बैठे कुछ बातें जरा मुझे याद आ जाती है। कुछ लोगों को ना मुखलिसी रास नहीं आती, यानी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो कि आपके साथ बिल्कुल मुखलिस है, तो अगले इंसान को वो मुखलिसी बिल्कुल भी रास नहीं आएगी, इसलिए वो अपने जैसों में ही जाकर मुतमिन होते हैं। और इसीलिए अगर आप किसी से बिल्कुल मुखलिसी से प्यार करते हैं, सच्चे आप उसके साथ बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन उसने आपकी कदर नहीं करी, उसने जाकर दूसरे लोगों से दोस्तियां बना ली, रिश्तेदारियां बना ली, तो सोची वो इंसान जैसा है उसे मुखलिसी रास नहीं आएगी और वो अपने जैसों में जाकर मुतमिन रहेगा। तो छोड़ दें इसे इंसानों को और जरा इंसानों के पीछे रोना धोना ये छोड़ दिया करें, क्योंकि एक इंसान कभी भी आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो जनाब आप अपनी जिंदगी के हिसाब से खुश रहना, जो है ना वो देखिए कि आपने कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहना। और टॉपिक को लाजमी जो है ना वो फॉलो कीजिएगा। मैं आज जाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बचपन की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है जो कि फिर मंडे के साथ जुड़ी हुई हैं। और मंडे जनाब जो है ना वो हर किसी के दिल में एक ऐसा अलग सा मकाम बना चुका है अपना। जो भी मंडे का सोचते हैं, चाहे हम मतलब कोई भी काम ना करें, कोई भी काम नहीं करते, ना स्कूल जाते हैं, ना कोई जॉब करते हैं, ना ही कोई हमारा ऐसा कोई काम है, लेकिन फिर भी मंडे के लिए जो हमारे दिल में है ना कि भाई मंडे ने हमारा पूरा बचपन जो है वो खराब कर दिया था, ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते। एक बचपन वाला ट्रॉमा जो है ना वो मिला हुआ है हमें मंडे जनाब से। तो आप बताएं कोई ऐसा जुमला जो कि आपको लगता है ये मंडे के लिए परफेक्ट होने वाला है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनिए। और उसके अलावा मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गाना मौजूद है, तो हम एक प्यारा सा गाना यहाँ पर आप लोगों के लिए लगा देते हैं। अच्छा, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम धीरे धीरे जो है ना वो थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। वैसे भी वो वाली बात है ना, एक ही चीज हमेशा थोड़ी ना टिकती है, तो गर्मियां हो या सर्दियां हो हमेशा थोड़ी ना टिकेगी। मौसम अच्छा हो चुका है, रात के टाइम तो क्या ही बात है। ओ शहजादी

हां जी शहजादी ओके जी पोस्ट को लाइक को शेयर करते जाइए जरा। मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। रिहाना खान में सुन रही हैं बखर से। रिहाना आपको वेलकम कहा जाता है। वासफ भाई की तेजी से दो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैं बोले इस्लाम बदर फिर केड़ा हारायन खुशाही चाक चगी भली सब मजे में ताऊ दा किया है। रिहाना कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं रिहाना खान बखर से, वेलकम टू शो। आपको भी वेलकम कहती रिहाना। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। एंजल सिस्टर आप कैसी है, सब मजे में ताऊ दा। उनके अलावा यूनिस खोड़ो हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यूनिस खोड़ो गोट दौलत खान से गड्डा कहते असान तो तुझे खातिर सनी दुनिया में सारी छड़ी पर खबर ना है तू कहजे करे असान के भी सारे छड़ियो। वाह वाह बिल्कुल सही लाइक इंडी शहजादी गुम थी गई लबे तदे की बुधाई से जोश।

हजार भाई कह रहे हम भी आपके साथ आ रहे हैं। हाँ जी भाई जान दादा के यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आपका शो सुन रही है, नादिया नाम है उसका, वेलकम करो ना नादिया, आपको भी वेलकम कहते हैं और कहती है आप ही चलें कोई बात नहीं। और हिदायतुल्लाह कहती है अस्सलाम वालेकुम कैसी हो, आज तो ये सॉन्ग सुनाना है शायद बबर का महबूब तू निस मुकदर मुझो, यो गानो असा कल वाले शाम वाले प्रोग्राम में बुधो हो मुख्य नवी खबर पर मुझे जी हलाई उठो तो मुझे खबर पे अच्छा ही तो असा शाम बुधो सो हलाईंदी कुछ नहीं है इंतजार के अच्छा आबिद द्रोही नौशिरो फिरोज खान से गड मौजूद है कि शो गुड है आपका थैंक यू वासा भाई कहते अदी सिडो जवाब जड़ी आचर गुजरंदो हुयो आई सूमर जी सुबह थींदो हुई अंदर सड़ी वेंदो हुयो स्कूल वनण जे करे सूमर उन ये डियां का वठी भलो नाए बिल्कुल बचपन का वठी जको ना सूमर खान सा के नफरत आयो उनन खास करी मानन के जके बाबा कम खान थोड़ो खुश नैन हुंदा पढ़ाई का खुश नैन हुंदा सोचो मन मंडी अगर अच्छी चो तो

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो. हिन खां अलावा तव्हां टॉपिक खे फॉलो कयो पिया. सूमर वीचारे जे लाइ सूमर जेको ॾियारो सूमर आहे, ईअं न त को माण्हू हुजे जंहिंजो नालो सूमर हूंदो आहे, हुनखे तव्हां को जुमिलो चई वियो. अगरि डे जेको आहे मंडे, हुन लाइ तव्हांखे को जुमिलो चवणो आहे त उहो तव्हां चई सघो था. बाबा ख़बर पए त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके वीचारे सूमर खां सड़िया वधनि था. ऐं हुन खां अलावा इहे मेरे साथ इरम मौजूदु. वालेकुम असलाम दिलबर, आपी छा हाल आहे? मां सफ़ा मज़े में, तव्हां ॿुधायो. और इहे मौजूदु. वालेकुम असलाम आपी, आपका शो वेरी नाइस है. गोठ मोहम्मद तैयब थीबू खां हबीबुला थीबू भाई असांखे ज्वाइन करे चुको आहे. वेलकम कहते हैं भाई को. ये मौजूद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नमस्ते मौला अली सलाम मदर. हेलो हाय, हाउ आर यू? कहते हैं कि मेरा मस्त मंडे, वेरी नाइस. फिर गूगल भाई से जी एफ एम की सुपर आरजी भाव को ज्वाइन किया. शो चलती का नाम मस्ती में. ओके, एंजॉय लाइफ एंड गुड शो. जयपाल भाई आपको वेलकम कहा जाता है. कहते टॉपिक मंडे ब्यूटीफुल डे, मेरे लिए तो क्या बात है मंडे की जनाब. ओके भाव, कराची की क्वीन के लिए एक सॉन्ग, हल्ला गुला सॉन्ग. वैसे भाव वो बात बिल्कुल मैं समझ गई. जयपाल भाई ठीक है. और कहते भाऊ हमने इजहार खुशी से मंडे, और हमने कराची में कारोबार भी मंडे, एंड हमारी शादी भी मंडे को होगी, तो थैंक्स मंडे. क्या मतलब, ये सोचकर आपने सब चीजें करी हैं कि बस जो करना है मैंने मंडे के दिन स्टार्ट करना है. वैसे हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई उनके लिए डे जो होता है ना, वो बहुत ऐसा होता है कि भाई हमारे लिए ये डे लकी है, तो वो उसी दिन वो तमाम काम करते हैं. हाँ, हर किसी का अपना अपना थिंकिंग होता है. तो जयपाल भाई ने तो सारे काम मंडे पर किए हैं, तो जयपाल भाई के लिए मंडे तो वो सही है भाई, अच्छा है, गुड डे.

0: पसीना पोपरिया गजबजी छोकरी दमादम
1: धन्यवाद
0: इहा त हकीकत आहे।

वास साईं वाह हसीना के केर माणी दो बाबा और जड़ी वरी नंडड़ा हुंदा से नी गानो बुद नासी पसा चंदा से छोथा चवनी त हसीना के केर मारी दो तू जड़ी वडा थे आजी खबर पई त बाबा मारण जी ना मारण जी गाल हले पई इन बिनी में फर्क आहे।

क्या बात है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम आप सुनते रहेंगे पूरे पूरे तीन बजे तक। चलती का नाम मस्ती और यहाँ पर आप लोगों के साथ मस्तियाँ होंगी जनाब। प्रोग्राम में आपका हमारा साथ और यहाँ पर जी गाना आप इंजॉय कीजिए। हसीना पोपरी हसीना पोपरी बुधन खां पोए ऐसा वींदा से न्यूज ब्रेक जी तरफ उन खां पोए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होगा तो वापसी जल्दी मोटी तवानींदा से तमाम करने में जो बैठा हो जमा ओ ही मनी ओ ही मोटू था। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 पर सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान।
6: अमेरिकी सदर जो ॾखण कोरिया सां फौजी मशकूं महदूद करण जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो त किम जोंग सां सुठनि लाॻापन सबबि गॾियल फौजी मशकनि में घटिताई चाहियां थो। ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर खे ॾखण सां कोरिया सां मशकूं महदूद करण लाइ हिदायत ॾेई छॾी। पार्लियामेंटी अॻवाननि जो मुशावरती इजलास अॼु क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक जी सदारत हेठि थींदो। तर्जुमान क़ौमी असेंबली जो चवण आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास अॼु 4 वॻे पार्लियामेंट हाउस में तलब कयो आहे। इजलास में क़ौमी असेंबली जे 29 एजेंडा ऐं पार्लियामेंटी कार्यवाही बाबति मुशावरत कई वेंदी।

इसराइल जे इंता पसंद कौमी सलामती जे वजीर जो नफ़रत जोगो बयान बिन गुर चयो आहे त इसराइल फ़ौज खे हर रात 30 खां 40 माण्हू मारण घुर्जन। इसराइल फ़ौज जे हिक ई कार्रवाई सिर्फ़ खतरे जो सबब बणजंदड़नि ताईं महदूद न हुअण घुर्जे। गज़ा में कुझ अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके जीअरा रहण जे क़ाबिल न आहिनि। ईरान जे नायब परडे॒ही वज़ीर चयो त इसराइली ॾोहारनि जे एतराफ़नि जो हिसाब ॾिनो वञे। ईसाइन जे रुहानी पेशवा पोपलियो पारां ओलह किनारे में फ़लस्तीननि ख़िलाफ़ ईसाइन जे रुहानी पेशवा पोपलियो पारां ओलह किनारे में फ़लस्तीननि ख़िलाफ़ तशदुद जे ख़ात्मे जो मुतालबो। पोपलियो चयो त आलमी बिरादरी पायदार अमुन लाइ ब रियासती हल लाइ किरदार अदा करे।

समुंड दरिया जबल बेट कारूंझर गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं। भले केस दाख़िल कयो वञे, धमकियूं ॾियो, का परवाह नाहे। कराची में स्ट्रेप्स ऑफ दी दुबई पारां सिंध नेशनल एक्सीलेंस एवार्ड तकरीब में क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो ख़िताब। अयाज़ लतीफ़ अली जे चयो त तरक़ी क़ाबिज़ धुरियुनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धड़नि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुर्जे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न आहे, पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराची खे सिंध खां धार करण ऐं सूबे जे नाले ते सिंध विरहाइण खे अवाम क़बूल न कंदो। भान सैदाबाद लग झांगारा में पीअण जे पाणीअ जो बोहरान, संगीन रहवासियुनि जो धरणो। झांगारा एक्शन कमेटी जे सॾ ते सवें ॻोठाणनि सेवण झांगारा रोड ते धरणो हयो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त कुदरती वसीलनि सां मालामाल हुजण बावजूद झांगारा वासी पाणीअ लाइ तरपी रहिया आहिनि। करोड़े रूपियनि जी लागत सां मंज़ूर थियल आरओ प्लांट खे यूसी चेयरमैन हलाइण लाइ तयार न आहे। टिनि ॾींहनि अंदरि पाणीअ जी खोट ख़तम न कई वई त इंडस हाईवे ते धरणो हणंदासीं।

0: कलोई लग जंगली जीवत गैर महफूज शिकारी नायाब नसल जा टे हिरण मारे छड़िया गोठ क्याड़ बारो में अणॼातल शिकारिन नायाब नसल के टिन हरणन के गोलियन जो खाज बनायो। ब हरण सरजमीन ते तड़पी तड़पी मरी वया। एक हरण के गोठाणन जख्मी हालत में हथ करे वरतो। रहवासियों जो चवण है असा वट जंगली जीवत मुकम्मिल गैर महफूज आन, इंतजामिया कदम खणे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Aksar वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6 ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिर प्रकाश मटियारी सकरण मेहरापुर मांतली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। चलती का नाम मस्ती ब्रो। और अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल सी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए जनाब मजी मजी के गाने लगाए जाते हैं, आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं और उनका अलावा मैं सोचने लग गई उनका अलावा जा तो आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि भाई आप मुझे बताएं कि मंडे के लिए आप कोई ऐसा जुमला बोलें जो आपको लगता है कि ये जुमला तो भाई जान मंडे को बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोगों को हम बता सके कि जनाब प्रोग्राम में वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रोग्राम में वो भी हमारे साथ फन कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगता तो बजाहिर ऐसा है कि ये हमारे साथ बहुत वफादार हैं, बहुत अच्छे इनकी जो है ना हमारे साथ बॉन्डिंग है और ये हमारा साथ हमेशा जो है ना वो देने वाले हैं। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी सीन हो जाता है कि कुछ लोग जो बजाहिर बहुत अच्छे नजर आते हैं लेकिन जब आगे जाकर थोड़ा वक्त बदलता है, थोड़े जज्बात बदल जाते हैं तो उनका असल जो चेहरा होता है, जो रंग होता है वो सामने आ जाता है। लेकिन ये भी चीज हमें जरा जहन में रखनी चाहिए कि जो एक वफादार इंसान होता है उसकी पहचान क्या होती है। कई मरतबा हम ये सोचने लग जाते हैं कि एक वफादार इंसान डिस्क्राइब करते हैं आपके भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में जो है ना एक वफादार इंसान, अगर आपको लगता है कि एक वफादार इंसान हमारी लाइफ में मौजूद है तो अगर ये तमाम क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद है तो तब आप यकीन कर लें कि हाँ एक वफादार इंसान वाकई आपकी जिंदगी में मौजूद है और वो ऐसा ही, क्योंकि वफादार इंसान जो होता है ना वो बस गायब हो जाएगा मगर वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि कुछ टाइम जैसे ही गुजर जाएगा कभी ना कभी अगर आपकी उससे मुलाकात हो जाएगी तो वो बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जैसे आपने उसे छोड़ा था। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि गलतियों पर छोड़ना नहीं बल्कि आपको संभाल लेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अगर आप गलती कर लेते हैं तो आपको छोड़ देते हैं, लेकिन जो वफादार इंसान होगा वो गलतियों पर आपको छोड़ेगा नहीं बल्कि आपको संभाल लेगा और आपको समझाएगा कि ये जो आपने चीज करी है ये गलत करी है और लोगों के सामने आपकी इज्जत बचाने वाला होगा। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो अगर लोगों के डर से जो है ना वो आपका चाहे कितना ही कोई प्यारा कितना ही कुछ से प्यार करने वाला इंसान हो उससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि भाई ये अगला इंसान तो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसने तो आगे दुनिया के सामने मेरी इज्जत रखनी है। लेकिन जो इंसान आपकी दुनिया के सामने इज्जत नहीं रखेगा ना तो ये चीज भी बिल्कुल सामने आ जाती है कि वो कभी भी आपके साथ वफादार नहीं है। लोगों के सामने आपकी इज्जत बचाने वाला इंसान ही आपके साथ वफादार होता है और उसके अलावा जरूरत के वक्त खामोश नहीं होना, क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जब हमें लगता है कि भाई ये दुनिया थोड़ी अजीब सी हो चुकी है, हमें कोई नहीं समझता, या फिर आपको लगता है कि अब जरूरत है हमारे लिए कोई स्टैंड ले, हमारे लिए कोई बोले, तो जो आपके लिए बोले और जो आपके हक में बोले वही आपके साथ वफादार होता है। और कुछ ऐसा भी हो जाता है कभी आपके पीठ पीछे वो आपका बुरा नहीं बोलेगा, जो आपके लिए बुरा बोलते होंगे उन्हें भी बोलेगा कि भाई आप क्यों ऐसा बोलते हैं, वही आपके साथ वफादार होगा। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि आपके साथ तो बिल्कुल वैसे होते जैसे भाई आपके लिए बहुत कुछ कर दें, लेकिन जब बात यहां से आ जाती है स्टार्ट होती है कि कुछ लोग आपके बारे बारे में बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो उनके साथ लग जाते हैं, हाँ जी ऐसा ही है ऐसा ही है। लेकिन जो आपके लिए बुरा ना बोले ना बुरा सुने, वही आपके लिए वफादार इंसान और आपका दुख उसका सुकून छीन ले। क्योंकि अक्सर हमारी लाइफ में कितने ही कोई सच्चे लोग क्यों ना होते हैं, लेकिन अगर आप दुखी हैं और वो खुश हैं, तो ये भी बात जरा हजम नहीं होती कि वो आपके साथ वफादार है। क्योंकि आपका दुख जो होगा ना, वो उसका दुख होगा। और वफादारी की नीयत जो है ना, वो नजर आती है, वो जबान से और सब साफ साफ वो दिखाई भी देता है। लोग जो भाई ये दिखावा करते हैं कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, आपके साथ वफादार हूँ, वो सिर्फ बातें बोलने की हद तक नहीं, वो कहते ना कि भाई बोलना जो है अगर आप करके दिखाएं तो क्या ही बात हो जाए। बोलने वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा हमारी जिंदगी में होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो वो लोगों के बिहेवियर से हमें मालूम हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की क्वालिटीज आपके पार्टनर के अंदर मौजूद है तो यकीन जाने कि वो बिल्कुल वफादार है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पार्टनर के अंदर तो समझ लीजिए कि भाईजान समझ गए होंगे। अच्छा एकड़ो डाडो भलो गानो इतने लिस्ट में है। गानो सा बदनासी जी पाल भाई मुखी ने गाने जी फरमाइश करी छड़ी हुई।

जिंदगी में हला गुला होना चाहिए। आए हाय जयपाल भाई कहते हैं, हाँ भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टेंशन हमेशा हमने ना किसी को दी है ना ही ली है। ये दोनों चीजें जो है ना वो जरा ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जो है ना वो बस ये सोचे कि भाई हमने, अगर आप कोई नेकी भी करते हैं ना तो वो किसी और के साथ नहीं करते बल्कि वो अपने साथ करते, क्योंकि उसका जो सलाह होगा वो आप ही को मिलता है। बाकी अगर आप नेकी करके दूसरे से उसका सलाह मांगते हैं तो ये फिर थोड़ा काम मुश्किल हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। तो नेकी करें, बस उसे दरिया में फेंकने वाला सीन बनाए।

रही है नहीं, मैं तो एवं ही आपको छोड़ देती हूँ भाई, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें। अच्छा ये हम नित्य कहती है टॉपिक हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, हर काम की स्टार्टिंग मंडे से होती है, सही सही। और चाचा कहती है गाने जी रुकेश टा बिल्कुल तव्हांजो गानो मो रिसीवर थो आहे, और कहती आज आपका शो हेडफोन लगाकर सुन रहा हूँ, डिफरेंट लग रहा है। अच्छा मिथिल कहती है आज मैं खाला के घर हूँ और मेरे साथ सब आपका शो सुन रहे हैं, सबको वेलकम करो। चले भाई सबको सबको सबको वेलकम किया जाएगा, और बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत ही प्यारा गाना है जो कि आप सबको डेडिकेट रहेगा, तो फिर बस सुनिए जरा गाना।

अब ऐसा नहीं कि नेकी कर और दरिया में डाल, अब ऐसा है कि नेकी कर और टिकटॉक पे लगा। हाँ ये सही बात है, लेकिन हम तो नहीं चलाते ना टिकटॉक, तो बस हम दरिया में फेंकेंगे लोगों को डालने टिकटॉक पर। और गुलाम अकबर खास के लिए हमारे साथी, वालेकुम असलाम लाड़काना की कोयल, आप के क्या हाल चाल जी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं और आपको वेलकम कहते हैं।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गाने के बाद हम जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के जाने, उसके बाद हम जल्दी से वापस आप लोगों के पास आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ मौजूद रहना, सुनते रहिए और हमारे साथ ये पूरे पूरे तीन बजे तक मैं जरा यूं जा कर यूं वापस आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। जल्दी का नाम मस्ती, आपका हमारे साथ पूरे पूरे तीन बजे।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज. GAFM 88 की आवाज.
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
5: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठहन चाहो था जिते हो जे तहफुज जदीद सहूलतों मंजूर थे सिक्योरिटी
6: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
5: सखर शिकारपुर रोड ते
6: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामू
5: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थे
6: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो.
5: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
6: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा
5: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज और 600 गज
6: इतने तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
5: साफ मिठो पानी
6: बिजली गैस
5: 24 कलाक सिक्योरिटी
6: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल और सबका वही गाल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भेजो है
5: जो रिहायश और सीढ़पकारी बिन्ह लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
6: अजय पेंजी प्लॉट की बुकिंग करायो
5: फौरी कब्जो और फौरी रजिस्ट्री
6: कॉन्टेक्ट
5: 03009317252
6: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
5: Tawaje Mehfooz Mustaqbil and Behtareen Investment jo Behtareen Intikhab Chha Tawaje Khwab aaye Doctor of Physical Therapy Nurse ya Health Professional banjan to koi tawal aaye ek behtareen mauqe Sakhar jo Motabar Idaro Sirajuddin Institute of Professional Studies mein in a session lai dakhlaon jaari hain 4 saalan ja degree programs GBSN, GBSM 5 saalan jo professional program Doctor of Physical Therapy DPD 5 saalan ja diploma programs LHV, CMW, CNA khas sahulaton scholarships maujood 5 saalan je courses mein admission bilkul

0: फ्री। जनेता डीपीडी प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 7,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरापी, ओपीडी जी बेहतरीन सहूलत। ही इधारो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा एंड पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता है। याद रखो सीट्स महदूद हैं, तह करे पैंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अगली दाखिला वो। एक खास गाल इतने मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेज ओटी हेल्थ टेक्नीशियन बया सब कोर्सेज पिण थींदा। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मैन बाईपास रोड, सखर। राबतो 07115635642 आई 03108166111।
1: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी।
2: जो भला साथ हुआ तो खे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
1: यार एक मसलो हुजे तब बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भुख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना आया।
2: यार तुझा घना न बस हिक ही मसलो आ।
1: हिक इहो की है?
2: हाँ तुझो मैदो खराब आ, खातो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हुंदो त

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना, इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचो।

0: तुझे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाल लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा। अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेस्ट हाउस। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया हरीश तो मैं अपनी जान ले लूंगी।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा।
4: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिं करे तव्हां खे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: साल बधाई,
1: हर साल की हो जाए बाबा, गाल समझ में नहीं दिया खैर। आप सुन रहे हैं जीएफएम एडीएट नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब शखर मोरो, मिर्पुर खास मटियारी, सकरण मेहरा पर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। चल दिखा नाम मस्ती, बिल्कुल तमाजी से जहाँ तमाम अगर मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे। 888 फेसबुक पर आप अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं।

आओ भाई दुश्मन करे दी मार छड़िया थई वाह जो गानो आ वाह जो गानो आ उन खा अलावा जेको आसो तमा जो कुछ मैसेजेस आए जयपाल भाई कहते हैं भाऊ नेट का इश्यू सॉन्ग भी नहीं सुना फिर अभी ऑन किया क्या है नेट सही नहीं चल रही और कहते हैं ओके भाऊ अब मैं कुछ काम कर लूं इजाजत है बस भाऊ आप खुश रहें हैप्पी रहें दुआ होती है मेरी ओके भाऊ फिर खुदा ने दी जिंदगी और जिंदगी ने दिया साथ तो होगी हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह और आप अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद इंशाल्लाह जी और आप भी अपना ख्याल रखिएगा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं बहुत अच्छे भाई कहते हैं कि जब लाड़काना में होता था तो फ्री में रेडियो से सुनता था क्या जमाना था वो ये बात तो है चलें कोई बात नहीं कोई मसला नहीं और साइमा मीर कहती बिल्कुल सिद्रो जो बातें बचपन में समझ नहीं आई शुक्र है वो अब समझ आती है प्लीज प्ले सॉन्ग तमाम गानो जो चाहे मां कोशिश क्या थी गानो हलाईंदी साइमा और इरम कहती है यार मेरी और अरीबा की तबीयत ठीक नहीं है सो आप सब दुआ कीजिए हमारे लिए बिल्कुल सी आप दोनों के लिए दुआ करेंगे और बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं दुश्मन बीमार करे सजाते हो चवल नारायण भूख भूख

सारे गाने की ये चीज मुझे समझ नहीं आती, हर साल वधाई छा मना। आबिद बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, आबिद बिरोही भाई आपको वेलकम कहते हैं। नौशीरो फिरोज से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सादिया कहती है आप ही मेरी फ्रेंड को वेलकम करें, और वो जी नादिया है। नादिया जी ये काफी पुराना हो चुका है, बोलते हैं तो उसे क्रिंज लगता है। और कहती है मंडे माई लकी डे, बिकॉज उस दिन मैं कॉलेज जाती हूँ और

मुझे कमर समान बलोच कहते हैं। ओके भाई को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी साथी, वालेकुम अस्सलाम, आइए मारिया, हाउ आर यू माय डियर, गुड शो एंड गुड आरजे, थैंक यू वेरी मच मारिया, आप हमारे साथ ही, आपको वेलकम कहा जाता है। और फजीला सिंधी हमारे साथ हैं, फजीला सिंधी क्या कहती है, लिखती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादे सदरा मस्कान, कैसी हो जानू, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। इट इज सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को, कहती है सही बोल रही हो डियर, क्या मैंने सही बोला। टॉपिक कहती है स्कूल टाइम, मंडे आता था तो यूनिफॉर्म इस्त्री करना भूल जाती थी, इसीलिए मंडे बुरा लगता था। ना संडे इतना जल्दी गुजर जाता था ना, पता ही नहीं चलता था, और हम ऐसा करते थे थोड़ा खेल लें थोड़ा खेल लें, फिर ऐसा करते करते पूरा जो ना वो संडे गुजर जाता था, फिर वाकई ये सही बात है, जो काम था मंडे का वो हम सारा भूल जाते हैं, फिर मंडे पर हमें जाकर सुबह सवेरे सारी चीजें याद आ जाती थी, फिर डांट भी खाते थे और काम भी करते थे। अच्छा वो तमाम चीजें जो थी उस टाइम हमें कितनी बुरी लगती थी, कितनी बुरी लगती थी, हम कहते हैं बस अल्लाह करे जल्दी से ये टाइम गुजर जाए, हम बड़े हो जाएं। अब वो सब बातें जो चीजें याद करती थी तो हमें कितना मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही वो तमाम दिन खत्म हो गए, क्यों ही हम

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं सारे ट्रेंड खत्म हो जाएंगे, बस मौला योर निगरत का ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा, ये मैंने बनाया है ना इसीलिए मेरे बनाए हुए ट्रेंड कभी खत्म नहीं होते समझ रहे हो।

हाय हाय वाह जो गानो बुधो सी वाह साई वाह वाह साई वाह मूसा कोरी भाषा की बुद्धि पयो अदी प्रोग्राम भलो आए थैंक यू वेरी मच। मायरा कहती है सिद्रा आप कॉल नहीं लेती हैं क्या? नहीं नहीं लेती मैं पता नहीं क्यों। और मूसा भात आंच लाई हलाया सी ना बुधो हूं तो मजो आयो हों।

0: bad too.
1: Toke disi
0: अच्छा चाचा पता नहीं देखेंगे और मूसा कोरी भाई कहते अद्दी सुमर वेचारो रोईंदो हूंदो लगे ये तो वाकई असांखे भी अच्छा चाचा कहते हैं कोई इंसान किसी के साथ वफादार नहीं बस एक पाक साथ अल्लाह पाक ही है प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन ह्यूमन बीइंग वैसे सही कह रहे हैं पर वो कभी गाल है ना इंसान इंसान का सवाल तो कुछ भी ना है मतलब पांजे जिंदगी में तवां के मानो हुजन मतलब सुठो इंसान वफादार इंसान मिलन एकड़ो वडी नेमत हुंदी आ मुखे लगंदो अल्लाह ताला जी तरफा अगर तवां के को सुठो इंसान मिलियो आहे वफादार इंसान मिलियो आहे आई उन हिसाब वारो मिलिया जे जेको मतलब तवां चाहियो पया तो या एकड़ी वडी नेमत आ अल्लाह साईं जी तरफा तो उन जो कदर कयो शुक्र अदा कयो कुछ मानू वरी ये हुंदा है जे की अगर जिंदी लाइफ में एड़ो इंसान अच्छी भी वेंदो आहे जेको हुनन के समझंदो आ नसा मोहब्बत कंदो आ आइन जी हर एक चीज जो ख्याल रखना पर बदले में उन इंसान के छा मिलंदा बेचारे के दुख मिलंदो आ सो ये भी न करना कयो केंजी सुठाई जो आइ केंजे भले अमल जो उन के जेको इनाम आ न वो दुखन से कदे भी न दींदा कयो तवां अगर बियो कुछ नथा बदले में करे सको त मेहरबानी करे उनन के दुख भी न दींदा कयो सो कोशिश कयो ये सब चीजों मुखे लगंदो आ इंसान जे हथ में हुंदी आ सो बियो कुछ न पर तवां कोशिश त करे सको था ना बस कोशिश कदा कयो रशीद खोसो पासे से अगर मौजूद आए वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद खां तवां सा जो प्रोग्राम बुधो पया आई साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ ही मिठो देरो से तवां सा जो प्रोग्राम बुधो पया सो थैंक यू हजार भाई कहते हैं सिस्टर बिग रिस्पेक्ट आपके लिए थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई हिदायतुल्लाह कहते हैं वो वफादार दोस्त मेरे पास है शहबाज तीन साल एक साथ थे फिर एक साल में गांव चला गया फिर अब वापस आया वैसे का वैसा ही मिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कभी भी धोखा नहीं देगा

अच्छा हिकड़ी बीबी गालाए त इंसानन ते हिकड़ो अंधो यकीन भी न करण घुरजे छो त दोस्त जड़ो चवंदा ना को दुश्मन ही ना हूं दुश्मन हिकड़ो हों ज़ाहिरी खबर हों बाबा ही अगलो असो दुश्मन आए पर जडी दोस्ती जे सर्कल में असो कोई दुश्मन अची वेंदो आ यानी दोस्त में हिकड़ो असो दुश्मन हों जो पीठ जी पोया वार कंदो आ उन्हन का अला सही बचाए या भी हमेशा दुआ कंदा कयो पंहिंजे लाइ हिकड़े साम्हूं वारे दुश्मन जी त बिल्कुल खबर हूंदी आहे त बाबा ही दुश्मन आहे हुन जी वार खां असां ख़बर हूंदी आहे त कीअं बचणो आहे पर जेको दोस्ती जे सर्कल में रही करे असां सां दुश्मनी कंदो आहे न बसि उन खां अलाह साईं बचाए उन खां अमान में रखे उहे ॾाढा जेके न ख़तरनाक हूंदा आहिनि।

सही कहते हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। गलती नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज करनी या नहीं करनी। तो बिल्कुल वही बात है। अच्छा, हैप्पी फाइजा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। सिडो जाने कैसी है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। शो सुपर डुपर है, चलती का नाम मस्ती, माय क्यूट आरजे कहती है कि हैप्पी फाइजा सिडो जाने, मेरे चाचू की शादी है, कल से शॉपिंग में बिजी हूँ, आज हम सब अपने गांव जा रहे हैं। क्या बात है, इंजॉय कीजिएगा। वैसे अभी शादियों वाला मंथ जो है ना, वह स्टार्ट हो चुका है, हमारी फैमिली में भी 3-4 शादियां होने वाली हैं, तो ये सही है भाई, इंजॉय कीजिएगा। और कहती है हम चाचू की शादी अपने गांव में करेंगे, आपको भी सलाह है चलो हमारे गांव। कौन सा है आपका गांव?

हाँ भाई तू भली मैं माणा कर पर लगी तो प्यार जेका चले बहुत अच्छा गाना था उन अलावा ही वो सॉन्ग है जो असि प्रोग्राम जो लास्ट वीक आए टाइम एतो जल्दी तेजी से गुजरे पो खबर ही न पी पवे अच्छा सो ही अस प्रेमचंद भाई मौजूद आए वालेकुम अस्सलाम रशीद खोजुबा तुम मबतुआन प्रोग्राम बुध पाया मोहम्मद राशिद अवान ही कहते प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा है ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रही आमीन सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई को वेलकम कहते शादी तुम गाने की फरमाइश कई पंज बजे वाले प्रोग्राम में तुम गानों हलाईंदा मेहताब अली इंदर भाई हमारे साथ मौजूद वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून अच्छा मायरा कहती है कि मैं मायरा हूँ और मायरा की सिस सनम आपको बहुत लाइक करती हूँ सिस आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ आपकी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है बहुत थैंक यू जी थैंक यू मेरा आवाज आपको सुकून देता है सो किसी के लिए तो सुकून का बायस हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है आपको वेलकम कहते हैं अच्छा अखलाक भाई आ चुके हैं अखलाक भाई लास्ट में आ गए थे नाइस शो थैंक यू अखलाक भाई

अच्छा निधि कहती मेरी छोटी मासी रिदा भी सुन रही है आज, उसको तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगी, बोल रही है माशाल्लाह। थैंक यू मासी, मौसी जी थैंक यू।

भी दिसो इसी के साथ ले देंगे आप लोगों से इजाजत वरी इंशाल्लाह सुभाणे तमा से मुलाकात थी पई मुझे अच्छा फजीला कहती है देखो मैं मुखलिस हूँ ना 2020 से सुनती आ रही हूँ तुम्हें और एड भी सुनती हूँ तुम्हारे शो के बहुत शुक्रिया चलें जी सो इसी के साथ आप लोगों से इजाजत वरी इंशाल्लाह तमाम सां मुझे मुलाकात थे पई बाबू पंजे बजे वाली प्रोग्राम में सो जिन माण्हुनि पोस्ट के लाइक शेयर ना कयो जल्दी कयो ऐं वरी किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि सभिनी खां माज़रत कयूं था सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular Mitti.
8: समूरन सरबराहन जो घरू वजीर मोहसिन नकवी की सदारत हेठ इजलास घरू वजारत के इदारन की कारकर्दगी बेहतर बनाने ए गडियल राबता मजबूत करने ते गौर मोहसिन नकवी चाहे घरू वजारत जो कम बेन वजारतन का मुख्तलिफ ए गैर मामूली है सभी इदारन के घुर्बल वसीला डींदी गर्जी एक बे के सपोर्ट कदासी सभी इदारन जहा सरबराह डेटा ए साइबर सिक्योरिटी से असरायता गडियल कदम यकीनी बनाये।

तेल गैस पेट्रोलियम बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला सीसीआई में उथारणु घुर्जनि। अरिड़हीं आईनी तरमीम ते मुकमिल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जी डेवलपमेंट कमेटी जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठ इजलास। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो आहे त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर ट्रस्ट ऐं ज़कवात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबनि ॾांहुं मुंतकिल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबब क़ौमी नाणे खे अरबे रुपयनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसी खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी भार ख़तम करे ख़र्च 109 अरब रुपयनि मां घटाए 130 अरब रुपया कयो वञे। कतल केस में मुआवजे जी रक़म मुक़रर जो मामलो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। जस्टिस हाशिम काकड़ जी सरबराही में बेंच जवाबदार नदीम ख़ान जे अपील ते ॿुधणी कई। प्रोसिक्यूटर चयो त मौजूदा वक़्त में मुआवजे जी रक़म तकरीबन 1.97 करोड़ आहे। जस्टिस अलाउद्दीन रिमार्क्स ॾिना त क़तल करणु थोरो महांगो हुजे त माण्हू कंहिंजो क़तल न कंदा। सऊदी अरब में क़तल जो मुआवज़ो 108 ॾियण आहे। जस्टिस इश्तियाक रिमार्क्स ॾिना त वक़्त ते फ़ैसिलो न थियण निज़ाम जी ख़राबी आहे ऐं निज़ाम जी ख़राबी जी सज़ा जवाबदार खे नथी ॾेई सघिजे।

इसराइल जे इंतापसंद वज़ीर जो गज़ा में रोज़ानो 30 खां 40 माण्हू क़तल करण जो मुतालबो क़ौमी सलामती जे वज़ीर बिन गवेर चयो आहे त इसराइल फ़ौज खे हर राति 30 खां 40 माण्हू मारण घुर्जनि। इसराइली फ़ौज जी ही कार्रवाई सिर्फ़ ख़तरे जो सबबु बणजंदड़नि ताईं महदूद न हुअण घुर्जे। गज़ा में कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके जीअरा रहण जे क़ाबिल न आहिनि। ईरान जे नाइब परडे॒ही वज़ीर चयो आहे त इसराइली ॾुहारिन जे एतिराफ़नि जो हिसाब ॾिनो वञे।

0: समुद्रदरिया जबल बेट कारूंजर गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं। भले केस दाख़िल कयो वञे, धमकियूं ॾियो या का परवाह न आहे। कराची में दुबई पारां सिंध नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब में क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अज़ लतीफ़ अली जो ख़िताब। अज़ लतीफ़ अली चयो त तरक़ी क़ाबिज़ धुरियुनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर तरक़ी धड़ियुनि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुर्जे। कराची सिंध खां धार को सियासी शहर न आहे पर सिंध जी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराचीअ खे सिंध खां धार करण लाइ सूबे जे नाले ते सिंध विरहाइण खे अवाम क़बूल न कंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: नेटवर्क से जुड़ा।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन, खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप
3: अमेरिकी सदर जे मके दिफाई मुआहदे जी हिमायत ते वजीर आजम पारा ट्रंप जी वाखाण वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त मके गडियल दिफाई मुआहदे ते अमेरिकी सदर जे लफ्ज़न जी वाखाण कयां थो। सऊदी अरब ऐं तुर्की सां गॾिजी पाकिस्तान पंहिंजो ऐं खिते जो दिफ़ा यकीनी बणाइण में किरदार अदा कंदो रहंदो।

जारी वधीक दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलूचिस्तान जे इलाइक़े कुरिज़ायत में कुझु ई इतलाउ ते ऑपरेशन दौरान ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाणप मुश्ताक अहमद उर्फ़ कोयार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां एम्यूनेशन मैगज़ीन दस्ती बम ऐं हुकूमत खिते खे गैर मुस्तक़िम बणिजी चुकी आहे। गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो आहे त तालिबान हुकूमत TTP खे महफ़ूज़ पनाहगाहूं ऐं हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश जा इलाक़ाई ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में सालसी जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि। घरू वज़ारत जे महतबरान जो घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी सदारत हेठि इजलास। घरू वज़ारत जे इदारनि जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं गडि॒यल राब्ता मज़बूत करण ते ग़ौर। मोहसिन नक़वी चयो आहे त घरू वज़ारत जो कम ॿियनि वज़ारतनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं गैर मामूली आहे। सभिनी इदारनि खे घुर्बल वसीला ॾींदासीं, गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदासीं। सभु डेटा ऐं साइबर सिक्योरिटीअ ते असराइता ऐं गडि॒यल क़दम यकीनी बणाइनि। तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला CCI में 18 आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जी डिलीवरेशन कमेटी जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास थियो। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वज़ारत, कल्चर, ट्रस्ट ऐं ज़कवात समेत ॿियूं ज़कावतूं वज़ारतूं हफ़्ते अंदर सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त 18 तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रूपियनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने खे गैर ज़रूरी बार ख़तम करे ख़र्च 190 खरब रूपियनि मां घटाए 130 खरब रूपया कयो वञे।

समुंड दरिया जबल बेट कारूंजर गैस कोयले ए पेट्रोल जा मालिक असा आयू भले केस दाखिल कयो धमकियों डियो का परवाह ना है। कराची में दुबई पारा सिंध नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब में कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अलीजे जो खिताब। अयाज लतीफ अलीजे तरक्की काबिल धुरन की दौलत वधाण लाय न पर धरती धणी की जिंदगी बेहतर बनाने लाय हुजन घुर्जे। कराची सिंध का धार को सियासी शहर ना है पर सिंध की तारीख ए वजूद जो हिस्सो है। कराची के सिंध का धार करण सूबे के नाले से सिंध विरायण के अवाम कबूल न कंदो।

लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम पीपीएचआई में जन करण खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कराची में एहतजाज, बिलावल हाउस ॾांहुं मार्च जी कोशिश, पुलिस खे रोके छॾियो, तलवार ते धरणो हणी रोड ब्लॉक। अॻवाननि चयो त सिंध हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम खे खानगाइण चाहे थी ऐं हुन जो बजट पिण खानगी कंपनी हवाले करण जी कोशिश कई पई वञे। मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां आयल केतिरनि ई लेडी हेल्थ वर्कर्स खे पुलिस गिरफ़्तार करे मुख़्तलिफ़

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सोना यूरिया
3: अक्सर वालदेन सवाल की दाहें तो जड़े असाजे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी है।

0: हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी? मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो नहीं।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: काहे मिलके बिछड़े थे आंसुओं में डूबे थे।
2: आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू नहीं होता।

0: कैसा महसूस हो रहा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: अगर खूबसूरत
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता दे वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सच।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: मान वथा।

समुंड दरिया जबलन बेटन गैस कोयले ऐं पेट्रोल जा मालिक असां आहियूं, भली केस दाख़िल कयो, धमकियूं ॾियो, का परवाह न आहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो अॼु दुबई में सिंध नेशनल एक्सीलेंस सेवा तकरीब। तरक़ी क़ाबिज़ धुरियुनि जी दौलत वधाइण लाइ न पर धरती धणियुनि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ हुजणु घुर्जे। कराची सिंध खां धार को सियासी शी तारीख़ ऐं वजूद जो हिसो आहे। कराचीअ खे सिंध मां धार नथो करे सघिजे। तेल गैस पेट ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला CCI में उथारण घुर्जनि। अरिड़हीं आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवेल्यूशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर ऐं वकात समेत ॿिनि हफ़्तनि अंदरि सूबे ॾांहुं मुंतकिल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सान पहुतो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी बार ख़तम करे खरब रुपया कयो वञे।

वफाकी हुकूमत जी कर्जन में 18,832 अरब रुपयनि जी वाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मूजिब 28 महीननि दौरान वफाकी हुकूमत जी मकामी कर्ज़नि में 16,766 अरब रुपये, परडेही कर्ज़नि में 2,066 अरब रुपयनि जी वाध थी आहे। जून 2026 ताईं वफाकी हुकूमत जो मजमूई कर्ज़ 83,642 अरब रुपयनि ते पहुची वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी, वधीक ब दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब बलोचिस्तान जे इलाइक़े कुली ज़ाइक़ में ऑपरेशन दौरान खे मारे वियो, 3 ज़ख़्मी थी पिया। मारिजी वियल हिकु दहशतगर्द जी सुञाण मुश्ताक अहमद कोहियार जे नाले सां थी आहे। दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां एम्यूनिशन, मैगज़ीन, दस्ती बम ऐं AID ठाहिण जो सामान पिण हथु कयो वियो। गडि॒यल क़ौमनि सरकार चयो त TTP खे महफ़ूज़ पनाहगाहूं, हथियार ऐं माली मदद फराहम करे रही आहे। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड ऐं दाइश ग्रुप पाकिस्तान लाइ वॾो ख़तरो आहिनि। सऊदी अरब, तुर्की, चीन ऐं कतर अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में टियाकड़ीअ जूं कोशिशूं करे चुका आहिनि। सिंध एक्शन कमेटी जी सेवण में एहतजाजी रैली। डॉक्टर न्याज कालाणी पुनल सारियूं ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में डिग्री कॉलेज खां धमार चौक ते रैली कढी वई। डॉक्टर न्याज कालाणी MQM अॻवाननि खे मुखातिब थींदे चयो त छा तव्हां शाहराह फैसल, लालू खेत, औरंगी ऐं कोरंगी हिंदुस्तान मां खणी आया हुआ? तव्हांजो सिंध हुकूमत सां जहिड़ो आहे त भली कयो, सिंध ख़िलाफ़ को बि साज़िश बर्दाश्त न कंदासीं।

लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम पीपीएचआई में ज़िम करण खिलाफ़ लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कराची में एहतजाज। बिलावल हाउस ना मार्च की भी कोशिश, पुलिस खेन रोके छो। टे तलवार वट धरणो, अगवाणन चयो सिंध हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के खानगाइण चाहे थी ए उन बजट पिण खानगी कंपनी हवाले करण की कोशिश कई पी वे। मुख्तलिफ जिलन में आयल केतर ही लेडी हेल्थ वर्कर्स के पुलिस गिरफ्तार कर मुख्तलिफ थानों से मुंतकिल कर छो। दादू में सोनारे के दुकान में फुर जाना लेट किरोड़ो रुपये जो सोन गिरफ्तार कर फिरियादी वटा हथ अची वो। पुलिस जो चवण है दुकान के मुलाजिम दानिश जोयो पंजे साले अरशद जोयो से गड़ी सोन लिकायो ए चोरी जो ड्रामो रचायो। दुकान जो असल मालिक अमीर जोयो जवाबदार जो सौट है जैकी गैर मौजूदगी में मुलाजिमन ड्रामो किया।

0: नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
3: GAFM 91.6।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
5: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार,
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: It's 10:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
0: आप सुन रहे
3: इस नारो KTN न्यूज।
4: सोलर एंड बैटरी

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमन को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुम इससे शादी करके तो बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: तब मेरी मामू मुझे छोड़कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी करी।
3: तुम्हारी मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: कि पूरा सुबह सिंध से जो लड़पड़े का नहीं करने देगा। बल्दियाती निजाम को लोग जब ये समझ जाए कि ये दौरा है, सिंध के मफाद में नहीं है, और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक चले कि हमारे एमपीएस आकर ये कहें लीडरशिप से कि नहीं इसको वापस लें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते। तो आप तसव्वुर करें, अगर खुदा ना खास्ता ये सूबे की बात से पीपल्स पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दें, मैं आप वैसे आर्गूमेंट के लिए बात कर रहा हूं, जहां भी बना दें, तो जो लोग बल्दियाती कानून में तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तस्वर कर सकते हैं कि वो कैंसिल करेंगे हमारा। अब वो तीन चार आदमी जो मैंने कल भी जाके कौंसिल नहीं बन सकते यार, हसीब तो एमसीएम की आज हसीब तो रहेगी, एक मिशी नहीं जी सकते ये, वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंह का मजीद सुबह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको कुछ शर्म आनी चाहिए, वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, दूसरे को शक्ल एक दूसरे देखना पसंद नहीं करते, और सुबह सिंध सुबह बनाने के लिए कोई कट्ठे बिठा देता तो बातचीत क्यों कर देते।
1: जेको वणे व करे वठो, लिखी थो ॾियां त सिंध में को सूबो न ठहंदो। सिंध में रुगो हिकु मकानी तरमीम थी हुई त अवाम बिटो निज़ाम करार ॾेई सॼी सिंध उथलाए छॾी हुई। असांजा एमपीएस घरनि मां निकिरी न पए सघिया, इहा तरमीम असांखे वापसि वठणी पई, ऐं तसवुरु कयो त असां मां कंहिं सूबनि जी हिमायत कई त अवाम कहिड़ो हशर कंदो। नवनि सूबनि जी ॻाल्हि जा ख़ौफ़नाक नतीजा निकिरंदा। सूबाई वज़ीर सईद गनी कोरंगीअ में तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त मोहसिन नक़वी या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीअ जी सिंध में कहिड़ी हैसियत आहे जो नवनि सूबनि जी ॻाल्हि कनि पिया। सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि टे चार उहे माण्हू करे रहिया आहिनि जेके काउंसलर बि नथा थी सघनि। हिक ॿिए खे गोलियूं ऐं कुर्सियूं हणण वारा नए सूबे जी ॻाल्हि कनि था, खेनि शर्म अचणु घुर्जे। जिन खे हिक ॿिए जी शिकिल पसंदि न आहे उहे कंहिंजे चवण ते गॾिजी सूबनि जो मुतालबो कनि था। तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली ऐं वॾनि बंदरगाहनि जा मामला सीसीआई में उथारणु घुर्जनि। अरिड़हीं आइनी तरमीम ते मुकमल अमल दरामद यकीनी बणायो वञे। सेनेट जे डिवलेशन कमेटीअ जो बैरिस्टर ज़मीर घुमरो जी सदारत हेठि इजलास। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो चयो त सिहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली, पाणी वारी वज़ारत, कल्चर, एक्वी ट्रस्ट ऐं ज़कात समेत ॿियूं वज़ारतूं ॿिनि हफ़्तनि अंदर सूबनि ॾांहुं मुंतक़िल कयूं वञनि। कमेटी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते अमल दरामद न थियण सबबि क़ौमी नाणे खे अरबे रुपियनि जो नुक़सानु थियो आहे। कमेटी हिदायत कई त वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसीअ खे घटाए क़ौमी ख़ज़ाने ते गैर ज़रूरी बार ख़तम करे ख़र्च 190 खरब रुपियनि मां घटाए 130 खरब रुपया कयो वञे।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
4: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: 19 अप्रैल से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।